ये जो बच्चे जो हाफिज़े कुरान बनते हैं, अल्लाह के कलाम को सीने में महफूज करते हैं, मेरे नबी की तारीफ से भरा पड़ा है कुरान, सुभान अल्लाह। इसमें एक अंदाज देखिए शायर का, आयतें आयतों से मिलाकर, अगर अगली बात पसंद आए वो आपकी पंजाबी जुबान के लिए सुभान अल्लाह की छल आनी चाहिए आखिर में, क्या ख्याल है? जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब इस पे मैं आपको डबल पैकेज दे रहा हूँ। इसमें एक आयत आएगा, आपने कहना है वद्दुहा वद्दुहा कर रहा हूँ, एक हरफ पे दस ने किया, नबी की नात भी और कुरान शरीफ की आयत भी है। तवज्जो।